0: নমস্কার, রেডিও মর্সাংদি 95 মেগাহার্জ র ইন্টারনেট অনলাইন রেডিও মর্সাংদি ডট ওআরজি মা বিহান 6:35 বজে মর্সাংদি সমাচার মা লক্ষ্মী কো স্বাগত ছ। প্রসারণ কো শুরুমা মুখ্য মুখ্য সমাচার কা শীর্ষকহরু।
1: मुख्य समाचारका प्रायोजक
2: आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउन, खरिद बिक्री गर्न तथा राशि अनुसारका एवं अन्य पत्थरहरूका लागि जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर साथ लमजुङ, प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा।
0: आज कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजा र जागरणमा रमाउँदै भक्तजन बर्खा र पहिरोले लमजुङ मनाङ सड़क अन्तर्गत बेसी शहरको खरखरे भीर उच्च जोखिममा। बाढ़ी पीड़ितका लागि युनिभर्सल एकाडेमीका शिक्षक विद्यार्थी र संचालक समितिबाट 3,50,000 सहयोग। लमजुङबाट बाढ़ी पीड़ितको लागि राहतका लागि सहयोग गर्ने क्रम जारी। विद्यार्थी संगठन, संघ संस्था, समूह र व्यक्तिद्वारा विपद कोषमा राहत रकम जम्मा। प्राकृतिक विपदका घटनाले पर्यटन व्यवसायमा धक्क र भदौ 22 गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय। 23 गते सार्वजनिक बिदा।

0: चाड़ पर्व में यूरोपेंट्स प्रस्तुत कर रंगीन घर बरसिंग उपहार रु 50,000 को यूरोपेंट्स को खरीद में पाने लकी ड्रॉ कूपन अनि पाने इन्वर्टर एसी 1 टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक अनि बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लागि बाली टूर यूरोपेंट्स घर मात्र होइन रंगाउन होस् सपना पनि।
1: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध। महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा। आप मुझसे क्या अपराध करते हैं?
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिवसो 3 बजे र साझा 6 बजे।
1: तब शांति से सूरज जाता तो हजारों सालों से शांति होती है भाई। कहाँ ये साले?
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
4: अन्नपूर्ण चलचित्र मंदिर बेसी शहर सम्पर्क 97 4 97 38 798।
5: I'm home.

0: मिथुन सर, आप यहाँ कैसे?
1: ये जुबिन की डायरी है जो मेरे रूम पे रह गई थी।
0: कौन जुबिन? मैं उन्हें नहीं जानती।
1: ओ, फिर तो ये डायरी आपको पढ़नी चाहिए, शायद ये आपको जानती है। प्लीज जरूर पढ़िएगा।

0: किसी को प्यार किसी से हो, एक तरफा से उन्हें जहां में मिला देता है कोई ना कोई।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सिक।
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर ने लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यस, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: जरा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: यूट्यूब सीआईएन चैनल में पसीना को सम्मान समानता को अभियान
1: कार्यक्रम साझा आवाज। सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा